0: हे प्रभु जगन्नाथ, बड़ विषम संकटरे पड़िछि ई दिन अकिंचन गजपति। सेदिन अजाणतरे तुम महाप्रसाद को अमान्य करिथिबा मोर बाम हस्त को छेदन करिथिलि, आउ निक्षेप करिथिलि मो पुष्प उद्यान रे। आश्चर्यर कथा, समाधिस्थ मोर से इच्छेदित हस्तरु सृष्टि हेइतला एक वृक्ष। वृक्षर पत्रर महक थिला अति चमत्कार। वृक्षर सुरक्षा पाई ये गजपति सबु व्यवस्था करिथिला। बड़ अद्भुत, इते कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थाई सुद्धा निसार्थरे से वृक्षर पत्र चोरी हेइ जाउछि। जेते चेष्टा कले भी चोरर सन्धान मिलुनि। हे दीनबंधु भावग्राही, मो समस्यार समाधान कर प्रभु, मो समस्यार समाधान कर।
1: समस्यार चिंतित हुई निदरे हजिगल कि गजपति? जोदिन तमे निजर फूल बुझिपारी अनुतप्त होइथिल, निजर हस्त को छेदन करी भूमि रे पोति देइथिल, सेइ दिन रातिरे ए जगन्नाथ बड़ देउलरे बसिपारी नथिला। तुम अचलाचल भक्ति रे मो रत्न सिंहासन थरी उठिथिला।
2: भाव भक्ति रे निजको हजि दियंतु एवं सुनुथांतु रेडियो भक्ति।

0: हे प्रभु जगन्नाथ, बड़ विषम संकट रे पड़ी ए दिन अकिंचन गजपति। से दिन अजाणत तुम महाप्रसाद को अमान्य करथिबा मोर बाम हस्त को छेदन करथिली आउ निक्षेप करथिली मो पुष्प उद्यान रे। आश्चर्य कथा, समाधिस्थ मोर से इच्छेदित हस्तरु सृष्टि हेतला एक वृक्ष। वृक्षर पत्रर महक थिला अति चमत्कार। वृक्षर सुरक्षा पाई ये गजपति सबु व्यवस्था करथिला। बड़ अद्भुत, इते कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थाई सुद्धा निसार्थ से वृक्षर पत्र चोरी हो जाऊ। जेते चेष्टा कले भी चोरर सन्धान मिलूनी। हे दीनबंधु भावग्राही, मो समस्यार समाधान कर प्रभु, मो समस्यार समाधान कर।
1: समस्यार चिंतित हुई निदरे हजिगल कि गजपति। जोदिन तमे निजर भूल बुझिपारी अनुतप्त होइथिल, निजर हस्त को छेदन करि भूमि रे पोति देइथिल, सेइ दिन राति रे ए जगन्नाथ बड़ देउल रे पसि पारि नथिल। तुम अचलाचल भक्ति रे मो रत्न सिंहासन थरी उठिथिल।
2: भाव भक्ति रे निजको हचि दियंतु एवं सुनुथांतु रेडियो भक्ति।